मान सरोवर कर स्नान सो हं सो जा कौ है जाप जा कौ लिपत न होए पुन अर पाप अबर्ण बर्ण काम नहीं छाम अवर न पाइय गुर की साम टारी न टरै आवे न जाय सुन सहज मह रहयो समाय मन मदे जाने जे कोय जो बोले सो आपे होए जोत मंत्र मन अस्थिर करै कह कबीर सो प्राणी तरै कोट सूर

भेद उचरै जाओ जाचौ तौ केवल राम आन देव स्यौ नाही काम रहाउ कोट चंद्र में करह चराक सुर तेती सौ जेवह पाक नव ग्रह कोट ठाडे दरबार धर्म कोट जाकै प्रतहार पवन कोट चौबारे फिर है बासक कोट सेज बिस्थर है समुंद कोट।

कोटक लखमी करै सीगार कोटक पाप पुन बहो हिरहै इंदर कोट जाके सेवा करहै छप्पन कोट जाके प्रतहार नगरी नगरी खियत अपार लाट छूटी।

दुर्योधन का मथिया मान कंदर्ब कोट जाक लव न तरह अंतर अंतर मनसा हरह कह कबीर सोन सा।

चटिया सब बिगारे राम नामा जप बो करै हिरदय हर जी को सिमरन धरै रहाओ बसदा बस कीनी सब राजे बिनती करै पटरानी पूत प्रहलाद कहया नहीं मानै तिन तौ औरै ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया करस है औध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काढ़ खड़ग काल पै कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राखै पीत पीतांबर त्रिपवन तनी थंब माहे हार पाखै हरनाखस जिन नख है बिदार्यो सोर नर किए सनाथा कह नाम देओ हम नर हर त्यावह राम अपै पद दाता सुल्तान पूछै सुन बे नामा देखाओ।

0: सगल कलेश निंदक भया खेद नामे नारायण नाही भेद जाओ कर देओ ता मिलै मुरार
1: घर दूजा
0: घर दूजा जाओ कर देओ।

0: बिन गुरदेव अवर नहीं का बिन गुरदेव अवर नहीं जाई नाम देव गौर की शरणाई
1: पैरो बाणी रविदास जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिन देखे।

जौ कोई पारस परस दुबिधा न होई रहाओ सो मुन मन की दुबिधा खाए बिन द्वारे त्रै लोक समाए मन मन का सुभाओ सब कोई करै करता खोए सो अन पैर है फल कारण।

जीवन जीवत मुकत सदा निर्बान कह रविदास परम बैराग हृदय राम की न जपस अपाग हृदय राम की न जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा रहाओ जिन आकाश कुल है सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर पोसका मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन कोट का पेहन तेरा सोलह सहस इजारा पार अठार है मुदगर तेरा सहनक सब संसारा देही महजिद मन मौलाना।

बसंत महला पहला। सोयने का चौका कंचन कुवार, रुपे किया कारा बहुत विस्तार।

0: पद भंडार बसंत महला तीजा तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटातार क्या कमावै जोग मन निर्मल नहीं दसवै द्वार।
1: इथे एक पिछे पाठ आया सी हुणे सोयने का चौका कंचन कुआर रुपे किया कारा बहुत विस्तार। इन रुपे पाठ हो गया सी, इन रुपे करना, रुपा कहिंदी आ चांदी नूं सिल्वर नूं, सो इस करके रुपे नहीं रुपे पाठ करना ही ख्याल रखियो।
0: बसंत महला तीजा तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटातार क्या कमावै जोग मन निर्मल नहीं दसवै द्वार भ्रम भ्रम आवै मूड़ा वारो वार एक ते

धर्म चुकाए, हुक्मै बुझै तां साचा पाए, जिस जियो अंतर मैला होए, तीर्थ भवै दिसंतर लोए, नानक मिलिया सतगुर संग, तौ भवजल के तूटस बंद, तौ भवजल के तूट

लीन अंग बिन हर नाम न सुध होए गुर शब्द सलाहे साच सोए जा को तू रख है जा को तू रख है रखन हार सत गुरु।

गुरमुख निर्मल मल सबद खोए। गुर मन मार्यो कर संजोग, अहनिस रावे भगत जोग। गुर संत सभा दुख मिटै रोग, जन नानक हार वर सहज जोग। बसंत महला पहला, आपे कुदरत करे साज। सच आप निबेड़े सच आप निबेड़े राज राज। गुरमत ऊतम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ। मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख। हर आप तुलाए अतुल तोल, रहाओ गुर चरण सरेव है गुर सिख तोर।

कह कंत प्यारी, जे तू पढ़या पंडित बीना, दोए अखर दोए नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा, बसंत हिंडोल महला पहला, राजा बालक नगरी काची, दुसटा नाल प्यारो, दोए माई दोए बापा पढ़िय है, पंडित करहो बीचारो, स्वामी स्वामी पंडता तुम देहो मति, किन बिद पावो प्राणपति, किन बिद पावो प्राणपति, रहाओ पीतर अगन बनास पत मौली, सागर पंडै पाया, चंद सूरज दोए घर ही पीतर, ऐसा ज्ञान ना पाया, राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे, ताके लखन जानिए है, खेमा धन संग्रेहे, खेमा धन संग्रेहे, कहया सुन है ना खाया मन है।

नाम उचरै, इन बिद प्राणी दुत्तर तरै, बिख अमृत कर तार उपाए, संसार बिरख कौ दुए फल लाए, आपे करता करे कराए, जो तिस भावै तिसै खवाए, नानक जिसनो नदर करे।

सोई करे जे हर जियो भावै सदा सुख शरीर भाणै चित लावै अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह सबद जलाए मन तन हरिया सतगुर पाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए साच फल लाग।

एक तुके तेरा किया किरम जंत देहता जापी आद मंत गुण आख विचारी मेरी माए हर जप हर कै लगाओ पाए रहाओ।

सब को रचै जित प्रभ लाया तित तित लगै रहाओ मेघ समय मोर नृतकार चंद देख बिगसै कौला चंद देख बिगसह कौलार माता बारिक देख आनंद त्यौ हरजन जीवह जप गोबिंद सिंह रुचै साध भोजन मास रण देख सूरे चित उलास किरपन कौ अत धन प्यार हरजन कौ हर हर आधार सर्ब रंग एक रंग माहे सर्ब सुखा सुख हर कै नाय तिसह प्रापत एहो निदान नानक गुर जिस करे दान बसंत महला पंजवा तिस बसंत जिस प्रभ किरपाल तिस बसंत जिस गुर दयाल मंगल तिस कै जिस एक काम मंगल तिस कै जिस एक काम तिस सद बसंत जिस हृदय नाम गृह ताके बसंत गनी जाके कीर्तन हर धुनी रहाओ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान तमाइया ऊछ जना सो तपसी जिस साध संग साध ध्यानी जिस गुरह रंग से निरभौ जिन भौ पया सो सुखिया जिस ब्रह्म गया सो एकांति जिस हृदा थाय सोई निहचल साच ठाय एका खोजै एक प्रीत दर्शन परसन हीत चीत हर रंग रंगा सहज मान नानक दास तिस जन कुरबान बसंत महला पंजवा जी प्राण तुम पिंड दीन मुगद सुंदर धार जोत कीन सब जाचक प्रभ तुम दयाल नाम जपत।

अगम अगम ऊच है ते ऊच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू त्याया से धनी जिन तू पाया से धनी जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से धनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तेस तू सेव जिन तू की

किया उपदेश जह गोविंद भगत सो धन देस हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद घट घट पछान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप कर।

नानकाओ पहुँच न सकस कोय, प्रभ दास रखे कर जतन आप, अखंड पूर्ण जा को प्रताप। गुण गोविंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण त्याए। बसंत महला पंजवा गुर

जप जीवै नानक राम नाम सा रुत सुहावी जित हर चित आवै बिन सतगुर दिसै बिल लांती साकत फिर फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ।

तेरी सेवा तुझते होवै और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद भावै जिस नो तू रंग धरता। तू वड दाता तू वड दाना और नहीं को दूजा। तू

साधो एह तन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहा ऐ डानो संग तिहारै कछु न चालै ताहे कहा लपटानो उस तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर आनो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो

0: जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी इह फास जेहे हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार।
1: जोगी दी थां ते जोगी पाठ ठीक है जी।
0: जोगी जंगम अर सन्यास।

जन नानक हर की सरनाए, दीजै नाम रहै गुण गाए। बसंत महला नावा माई, मैं धन पायो हर नाम। मन मेरो धावन ते छूट्यो, कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह एह परस न साकै, गही भगत भगवान। गही भगत भगवान, जन्म जन्म का संसा चूका। रतन नाम जब पाया, तृष्णा सकल बिनासी मानते। निज सुख माहि समाया, जा को होत दयाल कृपा निद। सो गोविंद गुण गावै, कहो नानक एह बिद की संपै। कौ गुरमुख पावै, कहो नानक एह बिद की संपै।

0: संपत ग्रेह, काछ संग ना चाले समझ लेह। एक भगत नारायण होए संग, एक भगत नारायण होए संग। कहो नानक भज तह एक संग
1: रंग,
0: कहो नानक भज तह एक रंग। कहो नानक भज तेह एक रंग। बसंत महला नावा कहा भूलो रे झूठे लोभ लाग।
1: लोभ

कुमन केर बरखस बाणी बुध बुधा हेर मातर बूंद ते धर चक फेर सर्ब जोत नामै की चेर सर्ब उपाए गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर नाम रतो चाहो तुझ ओर नाम दुराए चले सो चोर पत खोई बिख अंचल पाए साच नाम रतो पत स्यो कर जाए जो किछ कीनस प्रभ रजाए।

महला पहला। मन भूलो परमस आए जाए, आत लुबद लुभानो बिखम माए। नह अस्थिर दिसै एक पाए, ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बिचारे सहज पाए। रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बिकार। मैगल ज्यो फासस काम हार, काड़ बंधन बाध्यो सीस मार। मन मुगदो दादर भगत हीन, दार भ्रष्ट सरापी नाम बीन। ता कै जात ना पाती नाम लीन, सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले ना जाई ठाक राख, बिन हर रास

समझ रह मेहमान हार रस राता जान परवान इत उत देखो सहजे रावो तुझ बिन ठाकुर किसै न पावो नानक होमै शबद जलाया सतगुर साचा दर्स दिखाया बसंत महला पहला चंचल चीत ना पावै पारा आवत जात ना लागै बारा दुख घणो मरियै करतारा बिन प्रीतम को करै ना सारा सब ऊतम किस आखो हीना हर भगती सच नाम पतीना रहाओ औखद कर थाकी बहु तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाते ठाकुर मेरे रोग वड़ो क्यों बांधो तीरा रोग बुझै सो काटै पीरा मैं अवगण मन मैं अवगण मन मा

गर्भ जाहे, चलती बार तेरो कछु नाहे, पांच मार चित रखो थाए, जोग जुगत की एह पाए, होमे पैखड़ तेरे मन माहे, होमे पैखड़ तेरे मन माहे, हर न चेत है मूड़े मुकत जाहे, मात हार विसरे जाम वस पाहे, अंत काल मूड़े चोट खाहे, गुर शब्द बीचा

होहो सुजाखे ले हो पछाण। बसंत महला पहला। दुबिदा दुरमत अदुलीकार, मन मुख भरम मज गुबार। मन अंधुला अंधुली मत लागै, गुर करणी बिन भरम ना भागै। रहाओ मन मुख अंधुले गुरमत ना पाई, पशु भये अभिमान ना जाई। लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिरज समाए। सगली भूलै नहीं शब्द अचार, सो समझै जिस गुर करतार। गुर के चाकर ठाकुर भाणे, बखस लिए नाही जम काणे। जिनकै हिरदय एको पाया, आपे मेले परम चुकाया। बे मोहताज बे अंत अपारा, सच पतीजै करणै हारा। नानक भूले गुर समझावै, एक दिखावै साच टिकावै।

मन तूपी तरसह शरण पाए जेह अनुग्रह ठाकुर कियो आप से तैं लीने भगत राख तिन का गुण अवगण ना।

संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुर नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म भ्रमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत डंड गोविंद भजहो मेरे सदा मीत साच शब्द

लोभ डूबौ संसार काम क्रोध मन वस किया सुपन नाम न हर लिया कब ही राजा कब मंगनहार दुख सुख बाधौ संसार मन उदरन का साज नाहे पाप बंधन।

को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग ध्यान सन्यासी माते अहं मेव तपसी माते ताप कै भेव सब मद माते को न जाग संग ही चोर कर मुसन लाग रहाओ जागै सुख देव।

जागत सोवत बहु प्रकार गोरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर भज राम नाम कह कबीर भज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा काल को पाओ सुत मुकलाई।

बिन बासन खीर बिलोवै, बिन आसथन गऊ लवेरी, पैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई।

प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बिगूतो मैं को आहे माधव दारुण दुख सहयो ना जाए मेरो चपल बुद्ध स्यो कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभ कमल जाने ब्रह्माद काब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर।

कर्ण नेत्र सब झूठे, इंद्रे के झूठ उतरस नाही, ब्रह्म अगन के लूठे, अगन भी झूठी, पानी झूठा, झूठी बैस पकाया।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत निजर बाजै काया डूबै केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठुला रहाओ अनल बेड़ा हौ खेव ना साको तेरा पार ना पाया बीठुला हो दयाल सतगुर मेल तू मोह कौ पार उतारे केसवा नामा कह हौ तर पी ना जानो मोह कौ बाह देह बीठुला सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लैकर हाँकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती सार धोवन चाली लाडुली रहाओ धोबी धोवै ब्रह बिराता हर चरण मेरा मन राता भणत नाम देव राम रहया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझ है सुजंता कछु नाहे पहरावा देखे ऊब जाहे गर्भवती का नाही ठाव तेरी गर्द

करते रह, करता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वस्या।

तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पई अकाल की तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में। राज करेगा खालसा या की रह ना, खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे, जो शरदा कर सेम दे गुर पार उतारन। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है, सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी तर।

0: जाए बहन सतगुरु सो तान सुहावा राम राजे
1: बोले सोने गज गए यार गए और दादाजी जाइए चला रु और बाहर के यार बते बाबा चिकार के जमीन आलू जावे तान तान श्री गुरु गोविंद सिंह जी मन पावे गज के चुकाला ने हालो जावे तान तान श्री गुरु गंथा चित मन पावे ने आलो जावे श्री गुरु गट्टी गली रे गट्टी गली रे
2: जगारा ने वे ने हलो जावे तां तां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे मन नु पावे जगारा जावे ओदे पावे चिट्टियां बाजा वाले सतगुरु दे पवित्र चरणां नु फते पावे सुन

पाप का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तान भेद सुनया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठसठ का इसनान सुनया पढ़ पढ़ पावह मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पात साह सुनया अंधे पावह राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मोहे चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत सिउ प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवहै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोह है दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करै विचार करते कै करनै नाहि सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हुवै सचियार धवलै उपर केता भार धरती होर परै होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लेव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच माल भख खाहे असंख निंदक सिर कर है भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग।

दास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाईया नदिया अतः वाह पव है समुंद न जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा से तिमाल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनहु न विसर है अंत न सिफति कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखन सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोय बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ

धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बर में काढ़त कढ़िया है रूप रंग के वेश।

तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लो करह आनंद सच्चा मन सोए।

जेव जेव हुकम तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया सब

0: सिमरन कबू न चूरे,
1: प्रभ के सिमरन हर गुण बानी,
0: प्रभ के सिमरन सहस समानी,
1: प्रभ के सिमरन निचल आसन,
0: प्रभ के सिमरन कमल बगासन,
1: प्रभ के सिमरन अनहद चिनकार,
0: सुप्रा सिमरन का अंत न पार,
1: सिमरे से जन जिन को प्रमया,
0: नानक तिन्हें सन्नि पाया,
1: हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए,
0: हर सिमरन लग भेद उपाए,
1: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते,
0: हर सिमरन नीच चौकुट जाते,
1: हर सिमरन तारी सब तरना,
0: सिमर सिमर हर कारण।

अनक माया रंग तिखना बजावै जय मार गे जात केला ऐसा नाम मन सदा त्याई है छूटत नहीं कोट लख बाही अनक बिगंजा आए संघारे।

0: मन हर के नाम की मैं माऊच
1: नानक नाम उदरे पतच
0: बहु स्याण जम का पौ व्यापै
1: नानक जतन कर तिस न त्रापै।

0: साथ के संग आवे बस पंचा
1: सा
0: संग होए सब की रेन
1: साथ के संग
0: साथ के संग न कत हुंता वह।

0: व्रत गुण गाए,
1: साध के संग सर्वथान गम,
0: नानक साध के संग सब जनम,
1: साध के संग नहीं कछ काल,
0: दासन भेड़ तो निहार,
1: साध के संग कलु कथा रहे,
0: साध के संग नरक पर रहे।

ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी।

0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जा का सत स्थान
1: सत के बल प्रधान
0: करतूत सत सत जा की बाणी
1: सत गुरु सा माहे समान
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: सत सत
0: सत करणी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब
0: सत

जो तरह आपन चल ताप करने हारे अबनासी सुखे अपने आसन जब पूरण करता प्रसोए जब अभगित गोचर प्रवेका जब नाथ निरंजन गोचर गा दे अपने आप ही अचर जा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता।

0: ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शपे संत त्वै प्रसाद चक्कर चहनर बरन जात अर पात नहन जे
1: रूप रंग अर लेख भेद को कह न सकत के
0: अचल मूर तन पौ पर कासम तोज कही जे
1: ओट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणी जे
0: तर पवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रैन कहत
1: सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत
0: पुचांग पर्याद शांत।

0: आखिजे अपिजे समस्त प्रसिजे
1: कृपालन स्वरूपे कुकर्मन प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्ध निवासी
0: चार प्रसाद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे।

0: अन्न शिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार
1: जल थल महांत दस विश अखंड जल थल महांत दस विश बेअंत
0: अनुभव अनास त्रित तार तुरास अजान बाहु एके सदाहु
1: ओंकार आदि कथनी अनाद खंड खंड के आद कर पर अकाल
0: कार कार प्रणाम चित चरण नाम अन्न शिज गात आजिज ना बात
1: अंजंज गात अंदरंज बात अंडट भंडार अंडट अपार
0: आठ टीठ धर्म अत टीठ कर्म अन

0: ठाकुर प्रसाद पाशाही तस्वी त्व प्रसाद सवैय
1: श्रावक सुध समूह सदान के देख पर्यो कर जोग जति के
2: सूर सुरादन सुध सदा दिक संत समूह अने

0: पत अंत को नांगे ही पाए पधारे।
1: जीत परे सब देह दुसान को बाजट तोल मृदंग नगारे।
0: गूजत गूढ़ जान के सुंदर हिंसक ही हजराज हजारे।
1: भूत विवेक भगवान के भूपत कौन कने नहीं जात बिचारे।
0: श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे।
1: तीर्थ नान दया दम दान सजम देवर एक बसेके।
0: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखे।
1: मौन हार जति जतार सबे सब चार हजार के देखे।
0: श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति।

0: पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
1: वीर पार बड़े बरियार विचारे सार की दार बचैया।
0: तोरत देश मलिंद मवासन मात।

जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे साध समूह पर सन फिरे जग सतर सवे अब

0: जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे।
1: कहां पयो जो दो जो जन मूर्ख के बैठ रहे हो भक्त लगायो
0: नाथ फिरियो लिए।

0: अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सचे सवारिया।
1: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
0: बाबा जिस तू देहे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे बेचारिया।
1: एक परम भूले फिरे दिस नाम लाग सवारिया।
0: गुर प्रसादी मन पै

0: हो सोहिला सबदो सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहिला सत गुरु सुनाया
1: मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया
0: एक फिरे के नेरे करे गल्ला गली किने ना पाया
1: नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया
0: पवित होए से जना जिनी हर त्याया
1: पवित होए गुरमुख जिनी त्याया
0: पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संग सबाया
1: दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: धर्मी सहज ना उपजै बिन सहज सहसा ना जाए
0: ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए
1: सहसे जियो मलीन है के संजम तोता जाए
0: मन तो वो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए
1: नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एसे साहिब जाए
0: जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया
1: इतना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया
0: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बेतालिया
1: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया
0: जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी
1: उड़की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समानी
0: जन्म रतन जिन खटिया पले सेवन जारे
1: कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरनाले
0: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरनाले
1: गुर के चरण हृदय ध्याए अंतर आत्मे समाले
0: आप छड सदा रहे।

0: सचिव साक्त आप उपाय के करता आपे हुक्म वर्ताए
1: हुक्म वर्ताए आप विखै गुरमुख से बजाए
0: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए
1: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सो लिवलाए
0: कहे नानक आप करता आप हुक्म बजाए
1: सिमरत सातर पन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी
0: तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी
1: तेहीं गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहण बियाणी
0: गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी
1: कहे नानक सो तत पाए जिसनु आंदन हर लिव लागे जागत रहण बियाणी
0: माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये
1: मनो क्यों विसारिये ए वरदाता जे अगन में आहार पुचावे
0: उसनु कहो पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये
0: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया
0: माया अगन सब इको जेही करते खेल रचाया
1: जमया परवार पला पाया
0: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया

0: सो पाइये नाही पई कामन आनी।
1: जाय पुछो सुहागणी वाहे किन बाती सो पाइये।
0: जो किश करे सो पला कर मानिए हिकमत हुकम चुकाइये।
1: जाके प्रेम पदार्थ पाइये तो जानी चित लाइये।
0: सहो कहे सो कीजे तन मन दीजे ऐसा परमल लाइये।
1: ये कहे सुहागणी पैणे इन बाती सो पाइये।
0: आप गवाइये ता सो पाइये और कैसी चतराई।
1: सो नदर कर देखे सो दिल लिखे कामन नौंदित पाई।
0: अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई।
1: ऐसे रंग राती सहज की माती एनस पाए समाणी।
0: सुंदर साए स्वरूप विचखण कहिए।

ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही नानक दास सदा कुर्बानी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाए अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चाली मुक्तिया हठियां जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारिया सचियारिया दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह जिन्हां सिंघां सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाह प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके महाराज सिख संगता ने रल मिल के पावन बाणी श्री सुखमणि साहिब जी दे जाप अते नितनेम दियां बाणियां दे जाप कीते हन अगाध बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फलादेश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नूं अपने दरो करो नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां बख्शिश करदियां होइयां
अपने दार घर दे नाल इसे तरह जोड़ी रखना। आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंचामृत श्री कड़ाह प्रसाद जी दी देख सजा के हाजिर है। आप जी दे दर प्रवान होवे। दर प्रवानिया होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। पवित्र हुक्मनामे दी दात बख्शो। हुक्मनामे ते चलण दी समर्था बख्शो। उपरंत दिन दे दीवान सजाउण दी आग्या बख्शो जी। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। दोहरा आग्या पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभ को मिलो चाहे। राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो श्रद्धा कर सेवंदे।

जिता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगन हमारे दया करहो किछ मिहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

0: स्वगुरुप शासन जीव इन्हीं सेवा परिवार कड़ा पला चुका दिखी मां आओ सारी साह संगत फतेह जवाब फतेह जदेव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पवित्र हजूरी विच साज रही गुरु रूप गुरु खालसा परम सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी ने रब्बी बाणी का अमृतमई कीर्तन सरवण करवा रहे सन। भाई साहब भाई तरलोक सिंह जी पौंटा साहब वाले ते उन्हां दा कीर्तनी जथा समुचे ही जथे दा संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अज भाई सुखदेव सिंह बब्बर उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। उन्हां नूं 9 अगस्त 1992 नूं शहीद किया गया। असी उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेज करते हाँ ते नाल ही बहुत बहुत शहीदां नूं प्रणाम जिन्हां ने कौम दे लई अपनियां शहीदियां कीतियां। नाल ही संगत जी अज तकरीबन 12 बजे दे करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट जिहड़े आए हन उन्हां वल्लों बाहर सीनियर सेंटर विच एक इकट्ठ रख्या गया है। आप जी पहुँच के उन्हां दी दुख तकलीफ सुण दी कृपा करनी। सतगुरां दी पवित्र बाणी दा फरमान है कथा कीर्तन नाद तुन इह बन आयो सुआओ नानक प्रभ सो प्रसन्न पै बांशत फल पाओ। गुरु प्यारे साध संगत जी आप जी नूं गुरमत विचारां दी सांझ पाउण आ रहे हन। अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरमित्र सिंह जी श्री मंजी साहिब वाले मुख कथावाचक सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर वाले आओ बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल उन्हां कोलों सरवण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: साहिब जी हाँ गुसाई दा पहलवानड़ा मैं गुर मिल उच्च दुमालड़ा सब होई शिंज इकट्ठिया दयो बैठा वेखे आप जियो वात वजन टमक फेरिया मल लथे लैदे फेरिया नेह ते पांज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो सब इकट्ठे होए आया घर जासन वाट वटाया गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो नस वंज हो किल विख हो करता कर आया

राम जहे पापी जोशी जुल्म करन ते तुले गोविंद राम जहे पापी जोशी जुल्म करन ते फुले फड़ भैणा को मदिया दिल चो नरसिंह का भुले फड़ भैणा को

0: जोगिंद्रपाल सी पांडे जो गोलियां मारो दी पंड बन्नी जोगिंद्रपाल सी पांडे जो गोलियां मार सी ओदी पंड बन्नी नेता राम श्याम सने खुशी राम दिया गड़ पन्नी नेता राम श्याम सने खुशी राम दिया गड़ पन्नी
1: मार के पुतड़ पुलसिया नू योदिया

0: सिंह देव सिंगा भुलनी नहीं तेरी कुर्बानी।
1: नियत कीता समा समाप्त है। बहुत ही सत्कारयोग इस कमेटी के मुख सेवादार सैकटरी सतासदा बलजिंदर सिंह जी जिन्होंने समय की बख्शिश की है। समा समाप्त है। आओ एक बार सारी संगत फिर गुरु पातशाह के चरणों में झुकाइए सीस। उन्हां कौम के शहीदों नूं अपनी श्रद्धा के फुल भेट करते हुए गुरु पातशाह जी के फतेह के समय का जाप करके सारी संगत प्यासा ताखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: गुरु बयाली साहब सिंह जी आप जी ढाडी वारा सरवण करवा रहे सन। ज्ञानी जंडैल सिंह जी खुंडा ते उन्हां दा ढाडी जथा समुचे ही जथेदार संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरां दे पवित्र बाणी दा फरमान है, केल करेंदे हिंज नूं अचिंते बाज पए ते सरब दे केलां विसरियां। गुरु बयाली साहब सिंह जी एक अगस्त वाले दिन एक बहुत ही दुखदाई पाणा वरत्या जिस विच डॉक्टर हरविंदर सिंह जी रणिया अपनी छोटी जिही आजू नूं भोगदे होए एक हादसे दे विच अचानक ही अकाल चलाना कर गए, जिन्हां दे निमित्त श्री सहज पाठ दे भोग रखवाए गए सन। अज संस्कार की रस्म तो बाद हुण भोग पाए जाणगे। मैं भाई रविंदर सिंह जी हुणां नूं बेनती करदा हां कि उह पाठ की आरंभता करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
3: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग वडहंस महला पहला कर पंजवा अलाहणिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंदै लाया मुहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी।

राग एक संग पंच बरंगन संग लापह अठ नंदन प्रथम राग पहरव करही पंच रागनी संग उचरही।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगता हठियां जपियां तपियां। जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के शकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चराए गए। बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए। पुठियां खलां लुहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाही। तिना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका। सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे पवित्र यात्रा अते दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा हे अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामा। जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जी तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार। अते सेवा संभाल जी का दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाण्यो के माण। नेताण्यो के तान न्योट्यो की ओट सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जियां का पावन गुरवाक है। राणा राओ ना को रह रंग ना तुंग फकीर। वारी आपो अपनी कोय ना बंधे तीर। सतगुरु जी आप जियां दे बख्शिश कीते होए समय ते स्वासां रूपी पूंजी नूं भोगदिया होया। डॉक्टर हरविंदर सिंह जी जो पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सन सचे पातशाह। तिना दे अंतिम संस्कार उपरंत आप जिया की पावन पवित्र हजूरी विच अलाहणिया दे पाठ हुए हन। पिछले दिनी प्रारंभ हुए श्री सहज पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए। राम कली साध दे पाठ गुरबाणी कीर्तन छे पौड़िया आनंद साहिब जी की अरदास है जी। समुचियां ही सेवावां निभाउंदिया गुरबाणी पढ़दिया सुनदिया होइयां सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शनी। अगाह वास्ते समत बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी दा फल आदेश उस विछड़ी आत्मा नूं बख्शिश करदिया होइयां। सदीव काल वास्ते चरणा विच निवास बख्शिश करना। आवागवन दे गेड़ तों बचा के रखना। मात लोक विच विचरदिआं जाणे अणजाणे होइयां भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शिश करनी। पिछे समुचे ही परिवार साख संबंधियां नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करना। सारे ही परिवार दे सिर ते मेहरा भरिया हथ रख के अपने भाणे हुकम रजा दे विच राजी कर लैणा। सदा ही अंग और संग सहाई होना जी।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ, ਬਿਰਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਪੈਜ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸੇਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

रोवण सगल विकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै चंगा मंदा किश सूझै नाही एहो तन एवै खोवै एथे आया सब को जासी कूड़ करहो अहंकारो।

हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम ना चेतई मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन।

दास जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो नमन को मान दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान बाल जुआ

होवत अंध, मान माया में रम रहियो निकसत नाही न मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों चाड़ित नाही न पीत, नर चाहत काश औरै की औरै पई, चितवत रहियो ठगौर नानक फासी गल परी, जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कौ नानक सुन रे मना हर पावै सो होए, जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कौ नानक मन सिमरते हे पूर्ण हो वह काम, झूठै मान कहा करै जग सुपने ज्यों जान, इन मैं काछ तेरो नहीं नानक कहयो बखान, गर्म

सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन कौ नानक एह बिद भई तऊ न हर रस लीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तेह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कहो नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ता की जिए जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले शाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंद।

नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुर गोबिंद। कह नानक जगत में किन जपियो गुरमंत, राम नाम उर मैं गहयो जाके सम नहीं कोए। जे सिमरत संकट मिटै दर्स तुहारो होए। राम नाम उर मैं गहयो जाके सम नहीं कोए। जे सिमरत संकट मिटै दर्स तुहारो।

लाभ है। सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आशा गुन गुनी, उच्चे सुर सूहो पुन कीनी, मेघ राग स्यो पंचो चीनी, बैरा धर गज धर केदारा।

हर कथा पढ़ी है, हर नाम सुनी है, बेबाण हर रंग गुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सन मुख होया, रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी।

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मान नीवा, मत उची मत पत दा राखा, आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहा।

बुध है जेती बरन तपेन पेन तुहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बौहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ।

घाता। जे आस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम

है मेरे स्वामी, मैं तुझे आ गए अरदास, मैं होर थाओ नहीं जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सो कहो टल गुर सेवी है एहन इस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सज्जा पातशाह सिर

तनासरी महला तीजा काचा धन संच है मूरख गावार मनमुख भूले अंध गावार काचा धन संच है मूरख गावार मनमुख भूले अंध गावार बिखिया कै धन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा धन गुरमती पाए काचा धन फुन आवै जाए रहाओ मनमुख भूले सब मरहै गवार भव जल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रत्ते अहनिस बैराग चौहों जुग में अमृत साची बाणी पूरै भाग हर नाम समाणी सिद्ध साधिक तरसह सब लोए पूरै भाग प्राप्त होए सब किश साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दिरड़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए सब किश साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दिरड़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।